0: दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना एनसेल परिवार का हमारा संपूर्ण सदस्य हरुलाई एनसेल नेपाल के लागि
1: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 0664 20 670, मोबाइल नम्बर 98 460 56 238।